0: फेरा।
1: कल तक तो विदाउट लाइसेंस सिखाता रहा, आज आपके डैडी से लाइसेंस लेकर आ रहा हूँ।
0: कैसा लाइसेंस?
1: ये जानबूझकर अनजान बनने की शर्त नहीं है।
2: Tu dis Didi, monsieur, ouais, vous comprenez. Si l'affaire ne marche pas, Ahmar, si l'affaire ne marche pas, je la fais pas, monsieur. Voilà, déjà tu ne sais ça.
3: Radio Campus Tour 99.5.
2: Vous voulez m'annoncer des mauvaises nouvelles, mais je vais te montrer comment on va faire briller le soleil à travers les nuages, tu vois.